बिखै समाहे दोहरा। जब आए सुप्रभ को भयो जन्म तरह जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैद सुनाए कब बाच दोहरा। ठाड़ पहो मैं जोर कार बदन कहा सरन आए। पंथ चले तब जगत में जाब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुम रे त्यान को नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फाल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मो कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा के ते राव सास करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत। सुरगवा सरग बर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई। जो एह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निगत न आवै। बिसन भगत की ए फल होई आज ब्याद शुवै सकै न कोई। सम्मत 1755 हाड़ वदी प्रथम सुख दावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहु लेहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तार सद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूरन कियो रागबर कथा प्रसंग दोहरा। साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानो। सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक न जाने। ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो हे बखाने। ओ दोहरा सगल द्वार कौशा

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वधाईया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्द ता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हूं करे तेरा कारज सब सवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया

छुटह संगार निमक कृपाते कोट ब्रह्मांड उदार रहाउ। करह अरदास बहुत बेनंती निमक निमक सामार हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार। क्या ए भूपत बपुरे कहियह कहो ए किसनो मार। राख राख राख सुखदाते सब नानक जगत तुम्हार।

काट सिलक जाओ अपना कीनो, नानक सूख कनेरा सारग महला पंजवा, प्रभ सिमरत दुख बिनासी, भयो कृपाल जी सुखदाता, होई सगल खलासी रहाओ, अवर न को सूझै प्रभ बिना, कहो को किस पह जासी, ज्यो जान हो त्यो राख हो ठाकुर, सब किछ तुम ही पासी, हाथ दे राखे प्रभ अपने, साध जीवन अविनाशी, काहो नानक मन अनद भया।

खड शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन न थोरी पूजा चक्र वर्त नेम तपिया ऊहा गैल न छोरी अंधकूप मह पतित होत जग संतह करो परम गत मोरी साध संगत नानक भयो मुक्ता दर्शन।

सदा सदा तुम ही पथ राखहु अंतर जामी जान। जिन संतन जान्या तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग

0: तुम सम्राट कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे सुमत संग तुम्हारे पाई।
1: जन्म जन्म के इसे तरह उच्चारण करना, जन्म जन्म के इसे जमक ला के बिखई तुम तारे, बिखई ही उच्चारण करना, बेखई नहीं कहना, बिखई तुम तारे सुमत ते मम्मे ते अधिक दा प्रभाव देना, सुमत संग तुम्हारे पाई।
0: अनिक जोन प्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मेरे साधु कै ते ते पतित पुनीता। कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मह जाको छायो। संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो। नैनो संग संतन की सेवा चरण चारी के सायो। आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानक एहो पायो। सारग महला पंजवा जाकी राम नाम लिव लागी। सज्जन सोरिदा सुहेला सहजे सो कहिए बड़ भागी रहाओ। रहत विकार अल्प माया ते अहंग बुद्ध बिख त्यागी। दर्स प्यास आस एक कह की टेक ही है प्रिय पागी। अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी। कहो नानक जिन जगत ठगाना।

0: एक मन है सुचेत ते एक मन है अचेत। सुचेत मन दे नाल आपां सारे बाणी पढ़ रहे हैं। अचेत मन जिहड़ा जिहड़ा कर्म करदे आ, जिहड़े भाई ने उन्हां दा काम, उन्हां दा मन अचेत मन अपने काम च है, इधर उधर जॉब च है, कल नू की होना, माइया दा रोटी पानी वाल है क्योंकि वह कम कर दी है, जां किसी होर चीज वाल है। दो तरह के नाल साडा मन कम कर रहा है, एक तो इत्थे गुरद्वारे च बैठा है महाराज के दरबार च, एक इधर उधर भज रहा है। महाराज दोवां नू इसे समझाते हैं, समझ अचेत चेत मन मेरे, ये मेरे अचेत मना तू ही समझ, तू मेरा साथ देना कर। चेत मन मेरे, मेरे जिहड़ा सुचेत मन है वह मन, तू भी इस गल नू समझना कर। कथी संतन अकथ खानी, संतां दी कथी हुई कथा जिहड़ी है वह अकथ है, वह नाश होण वाली नहीं। गुरबाणी गुरु का शब्द झूठा नहीं, वह बिल्कुल सच्चा है। दोवें मना नू एक कर लैणा सिखी दा साध संगत जी, सिखी दे विच कह लो एक मैडल दी न्याई है गुरु नानक दे घर दे विच। दो मना नू एक करके जो असीं तुर पए, हांजी,
1: लाभ लैहो हर हृदय अराधा हो, छुटके आवण जानी, उद्दम सगत सियाणप तुमरी, देह ता नाम वखाणी, सेई भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभ पाणी। सारग महला पंजवा, तनवंत नाम के वणजारे, सांझी करो नाम तन खाटहो, गुर का शब्द बिचारे, रहाओ छोड़ो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारे। सच तन बन जाओ, सच तन संचहो, कबहु न आवहो हारे। खात खर्चत किछ निकुटत नाही, अगनत परे पंडारे, कहो नानक सोभा संग।

आवै राम सरण वड भागी, एकस बिन किछ होर ना जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच क्रम आराधे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर किरपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिय, जो राते प्रभ निर्बाणी। सारग महला पंजवा, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो प्रगासा।

पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसै सब नेरै रहाओ। बंधन तोर राम लिव लाई, संत संग बन आई। जन्म पदार्थ भयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करो प्रभ मेरे, सो हर का जस

नानक संत चात्रिक की न्याई, हर बूंद पान सुख थेवन, सारग महला पंजवा, हर के नाम हीन बेताल, जेता करन करावन तेता, सब बंधन जंजाल रहाओ। बिन प्रभ सेव करत अन सेवा, बिरथा काटे काल, जब जम आए।

उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट पाज साध सांग गोबिंद नानक काछ न लागे फेट सारग महला पंजवा अंधे खाव है बिसू के गटाक नैन श्रवण शरीर सब।

0: किल बिख करत करत पछतावह, कब होना साकह छांट। निंदक जमदूती आए संघारियो, देवह मूड उपर मुटाक।
1: निंदक जमदूती, निंदक ते भी थोड़ा जा रुकना ते जमदूती ते भी ठहरा लाउणा, निंदक नूं नखेड़ के। निंदक जमदूती आए संघारियो, निंदक जिहड़ा सी ना उहनूं जमदूतां ने आण के संघार दित्ता। जिहड़ा गुरु परमेश्वर दा निंदक है उहदा जमदूत आण के साध संगत जी उस नूं फड़दे हन। निंदक जमदूती आए संघारियो, देवह मूड उपर मटाक। हांजी
0: नानक।

0: सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेह सत ते जन जिन प्रतीत
1: उपजी
0: नानक नह परमेह सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेह
1: सत पाठ ते जमक जरूर लाउणी सत ते जन ओ वाले जन सत हन जिन प्रतीत उपजी जिन्हां नूं ए प्रतीत पैदा हो गई जिन्हां दे अंदर सत ते जन इकट्ठा नहीं पड़ जाणा एक ते दो तत्ते इकट्ठे है एक साध संगत जी स्पष्ट नहीं हुंदा सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेह।

0: माखी।
1: माखी पाठ ते विश्राम याद रखना। माखी राम की तू माखी।
0: जय दुर्गंध तहा तू बैसह, महा बिख्या मद चाखी रहाओ। कित है अस्थान तू टिकन ना पावह, ए बिद देखी आखी। संता बिनत कोय न छाड़िया, संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे, बिन संता किने न लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता, शब्द सुरत सच साखी। सारग महला पंजवा, माई री काटी जम की फास। हर हर जपत सर्व सुख पाए, बीचे ग्रस्त उदास रहाओ। कर कृपा लीने कर अपने, उपजी दर्स प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए, बिनसी दुतिया आस। महा उद्यान अटवी ते काढे, मार्ग संत कहेओ। देखत दर्स पाप सब नासे, हर नानक रतन लहेओ। माई री अरेओ प्रेम की खोर, दर्शन रुचित प्यास मन सुंदर। सकत ना कोई तोर रहाओ। प्राण मान पात पित सुत बंधप, हर सर्बस तन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रिम,

हर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसे सब अभिमानी रहाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी।

करना औखा है, रस्ते नु तय करना औखा है, रस्ते ते चलना बड़ा औखा है। तो इस तरह धार्मिक जगत विच ज्ञान नु ते दृष्टि मन लिया गया, नेत्र मन लिया गया, श्रद्धा नु पैर मन लिया गया, भावना नु पैर मन लिया गया। श्रद्धा ही नहीं, भावना ही नहीं, भरोसा ही नहीं, चलना औखा है, कठिन है। ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, पता ही नहीं रस्ते का, दिखाई नहीं देता, मंजिल दिखाई नहीं देती, तां भी चलना बड़ा औखा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण कर देने, ऐसे अंधे दुनिया विच घटने जिन्हों बार दे रस्ते नहीं दिखाई देंगे, सड़क ना दिखाई देंगे, ऐसे अंधिया की तादाद बहुत थोड़ी है। और जिन्हों प्रभु का मार्ग नहीं दिखाई देता, ऐसे अंधिया नाल संसार भरिया पड़ा, ऐसे अंधिया नाल जगत भरिया। जिहड़े चल ही नहीं सकते, ऐसे लंगड़े, ऐसे पैरां तो हीणे मनुख जगत विच बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, गिणती दे हिसाब नाल थोड़े ने, औसतन थोड़े ने, चल नहीं सकते। इस तरह के लंगड़े बहुत थोड़े ने, पर जिन्हां कोल श्रद्धा ही कोई नहीं, भावना ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं, ऐसे लंगड़िया नाल संसार भरिया पाया, भरिया पै। तो साहब कहने रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे है, ये अंधा, ये लंगड़ा, ये टुंडा किस तरह पहुंचे परमात्मा, किवें पहुंचे? सतगुरु कहते ने मैनू धार्मिक जगत विच मनुख अंगहीण दिखाई देंदे, अंगहीन दिखाई देता, अंग ही कोई नहीं, ना अखा। भाई साहब भाई गुरदास जी तो इतने तक कहते अंग अंगहीन, ऐसा नहीं कि एक अंग, देख बे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई है, देख सकिए अखा ही कोई नहीं, दृष्टि कोई नहीं। और जिहड़ी दृष्टि है, जिहड़ियां अखां हैगियां ने, संसार दिखाई देंदा निरंकार नहीं, पदार्थ दिखाई देंदा परमात्मा नहीं, परिवार दिखाई देंदा निरंकार नहीं। देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए, कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सका, कुछ कह सका, जवानी कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल सुन सका, कानी कोई नहीं, बहरा। भाई साहब भाई गुरदास जी बहरा। हे गुरु तेरे बोल सुन सका, मेरे कोल कन नहीं ने, और जिहड़े कन मेरे कोल हैगे ने, इहदे नाल मैं ते परिवार की गल सुन सकदा तेरी नहीं, मैं संसार दीआं गल्लां सुन सकदा तेरे नहीं, मैं बिखे नाद सुन सकदा तेरा गीत नहीं, मेरे कोल कन ही कोई नहीं। तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका, मेरे कुल जबान ही कोई नहीं। मनुख कोल जिहड़ी जबान है, वक्त वद इहदे बोल पहुंचदे ने पुत्रां तक, मित्रां तक, परिवार तक। चलो किसे किसे दे बोलां च बरकत आउंदी, उहनां दे बोल राज दरबार तक भी पहुंच जांदे ने, राज घरानियां तक भी पहुंच जांदे। पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हों के बोल निरंकार तक पहुंचते ने, जाका कहा दरगे चले, जिदा कहा होया दरगाह विच भी चलता।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। रामकली मल्ला पहला। दूसरा पहले पातशाह जी का वाक जो जपजी साहब रहराज साहब ते आसा राग दे चाया है, इको ही शब्द है थोड़े जिहा लगा मात्रा दे भेद नाल। सो दर कहा, सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हार। पूरे शब्द विच उस दर दी उस घर दी व्याख्या। प्रथम इस दर दी इस घर दी तलाश कौन करेगा? कुछ दिन दास ने आपनु सरवन कराया, जिस दर कारण फेरा उदासी। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहे हैं, जो हर घर तो हर दर तो निराश नहीं उदास नहीं, वो उस घर दी तलाश नहीं करेगा, उस दर दी तलाश नहीं करेगा जो वास्तविक इसे दा ही दर है और मनुख दा ही घर है, उथे ही जाना है। जितने चिर तक उस घर दी प्राप्ति नहीं उस दर दी प्राप्ति नहीं, इंज समझ लो जीव रस्ते दे च है, मंजिले मकसूद ते नहीं। पर महाराज ऐसा कहने दर घर की सोजी ना है, समझ नहीं। आवाज मार देने गुरु अर्जन देव जी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये तन ते अपने घर चला जाता है। तुसी आखोगे तन दा घर की है? एक मिनट लवा। जेड़ा मनुख बुढ़ा है वो कुछ दिन पहले आखिर जवान सी, जेड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, और जो बच्चा है वो कुछ दिन पहले बिंद सी खून सी। माँ की रक्त पिता बिंधारा, बिंद ते जिन पिंड किया, रकत बिंद करने में बिंद से रकत से लहू से। और जो पहले बिंद से लहू से उस तो पहले किसी खुराक से रोटी से भोजन से, और जो खुराक है उस तो पहले किसी खाक से मिट्टी से, मिट्टी से खाक यात्रा ते चल पई, मिट्टी यात्रा ते चल पई, खाक बन गई खुराक, खुराक बन गया खून बिंद। माँ की रक्त पिता बिंधारा, खून बिंद, बिंद ते खून बन गया बच्चा, संजोग तो बन गया बच्चा, बच्चा हो गया जवान, जवान हो गया बुढ़ा, बुढ़ा फिर मिट्टी देच मिट्टी, खाक देच खाक। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तो क्या असी खे देच खे होने वास्ते आया? कतई नहीं। ये तन खे है, ये तन अपने घर पहुंच जाता है, तन दा घर शमशान घाट है पहुंच जाता है, तन दा घर कबर है सारियां दे पहुंच जाता है। रोज रोज मनुख दा तन शमशान दे नेड़े ही जा रहे है, मरघट दे नेड़े जा रहे है।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: जेड़े दाने मिट्टी च छुप गए वो दाने फली पूत हो गए। एक दाने नूं 18 दाने लगदे ने सजणों। किलोआं च बीजिया बीज क्विंटलां विच ट्रालियां भर के कढ़ने। पता क्यों? वो दाने धरती च छुप गए। बंदगी करन वाले अपने आप नूं छुपा लैंदे ने। वक्त आउंदे दुनिया विच उहनां दी सोभा मशहूर हुंदी है। वक्त आउंदे उहनां दी वडियाई वधणी शुरू हुंदी है। इत्थों तक वो बंदगी दी इन्नी बरकत छड़ जांदे ने कि वो शरीर करके चले भी जान सदियां तक लोक उहनां दी बरकत खांदे रहिंदे ने। उत्तों बाद आउण वाले दी भगती नवीं होवे पर उस पहले बंदगी वाले साधु दी बरकत ओह जगह ते रह जांदी। उन्हों महाराज बाणी अंदर कहिंदे करोड़ां लोक उहनां दी बरकत खांदे ने, मुकदी नहीं बंदगी दी बरकत। जिहड़े एक मन चित करके सिमर जांदे, जो मन चित इक अराध दे, तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। असंखां करोड़ां लोक शरीर मरण तो बाद भी उहनां दी बरकत खांदे रहिंदे ने। महापुरश श्रीमान संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले सत्संगत, मैं उन्होंने अस्थान के दर्शन किए। वो इन्नी क बरकत जिथे साधु चरण रख देंगे ने उत्थे बरकत पा जाते। एक अस्थान है, वो पिंड का ना है भामिया। उत्थे महापुरश गए तो छोटा जिहा स्थान इदा बनिया होया सी। भाई निछत्र सिंह अज शरीर करके जिउंदे ने उत्थे, बजुर्ग ने। वो कहिंदे किसी महापुरशां दा स्थान सी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सी, लोक उहनूं शहीदां वाला गुरद्वारा कहिंदे सी। मैं उत्थे सेवा करदा सी। तो कहिंदा भाई साहिब जी, कदे कदे संगरांद वाले दिन 10 लोक आउणे, कदे कदे संगरांद वाले दिन 10-20 लोक आउंदे, उंज पूरा महीना उत्थे कोई नहीं सी आउंदा। कहिंदा महापुरश आ गए, उन्हां नाल 10-20 जने होर संगत भी आ गई। दरखत दी छावे असीं मंजा डाहता। कहिंदे उत्थे बैठिआं बैठिआं ना मंजे ते महापुरशां नूं असीं जल छकाया ते सेवादारां नूं पुछिआ वी बाबा जी चाह पी लैंदे आ? उह कहिंदे कोई नहीं, तुसीं शरदा नाल बनाओ, छक लैंदे। कहिंदा असीं छोटा जिहा चुल्हा सी इट्टां दा, उत्ते पतीला रखिआ। पिंडों एक बंदे नूं भेजिआ, किसे दे घरों पाईआ क दुध लै के आ। उन्हें पिंडों किसी के घरों पाईया का दुध लिया, चाह बनाई 8-10 कप। वो महापुरशां नूं छकाया। कहना जो महापुरशां चाह पीती ना तो उत्थे मंजे ते बैठिया बैठिया उन्हां दा ध्यान दरखत वल गया। दरखत उत्ते एक घुग्गी बोल रही सी। कहना हुण उह घुग्गी दी आवाज जिदा वह बोलती अपनी टून च बोलती है, वह घुग्गी की आवाज सुन के ना महापुरशां ने ग्रंथी नूं सद्या। कहिंदे निछत्र सिंह, आ घुग्गी की बोलती है? कहिंदा ग्रंथी हाथ जोड़ के निछत्र सिंह कहिंदा, महाराज मैनू की पता, घुग्गी तो अपनी भाषा च बोलती।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah. Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिव ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीरत साहब जी ने आज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिवलाई उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी की भगती की। आरंभता है प्रेमा भगती तो। तन गुरु नानक साहब जी ने हठ की गल नहीं की। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती लई सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना इना खदिया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इस शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दिती, ऊर्जा टिका दिती, जेड़ा सूरज नू अपने तो करोड़ा को दी दूरी होने दे बावजूद भी ओदियां किरणा नू देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओ केड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकनाती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिक्कड़ विच खिड़े होए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहनिया उदाहरणा कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक के गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोना दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके ओनू सिखाया कि ओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदो ए अपनी थां सारी रात बदलता है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदो रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिट ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्हां ने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नू पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नू मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं। मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नू पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की थी। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, निहो कवल जल जानिए, खेड़ मूंह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पे कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओ खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ असमान दे उते, ओ धरती दे उते, जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारिए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए बिलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है, पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खोन सुखाले, न्यो कवल जन जानिया, खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है, पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभण वाली, ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना वा कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, कि तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए, मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है, मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी, पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है। जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा है बिन प्यार, मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है, ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं, ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए, उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं, डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ये ए क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करें, परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें असमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटने, बंदगी करके ही जिंदगी है, से बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा, जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्हां ने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਈ ਨੂੰ ਨੇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੱਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੈਸੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਪ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਏਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਗਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਸਜਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ ਨੱਪੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ, ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ, ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਿਰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਖੇਚਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਿਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਵਾਂ। ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ, ਲਿਆਓ ਆਵ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੁਜੂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਧਾ ਚੱਕੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕੈਸੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਵੇ ਸ਼ਿਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਇਸ ਮੈਲੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੱਡ ਪਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਭਵਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਹਵੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ, ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਛਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਠੋਕਰਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਾ,
0: KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਪਾਈਏ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਵਖਦ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬੈਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ

0: करना मैं दीन बेनती करे
1: नानक तुमरी कृपा तरह
0: संग सहाई सो आवै न जीत
1: जो बर आई ता स्यों प्रीत
0: बलुआ के गृह भीतर बसे
1: अंत केल माया रंग रसै
0: गृह कर्मा ने मन प्रतीत
1: काल न आवै मूड़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महा दोभ त्रोह
0: यहूं जुगत बिहानी कई जन्म
1: नानक राख लिहो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास
1: जीव बिन सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे
1: तुमरी कृपा में सुख घनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊचे ते ऊचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी
1: तुमते हुए सो आज्ञाकारी।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आप जंजाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभधारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब से ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर धन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए पल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

एक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद। नमो सर माने समस्ते निधाने, नमो देव देव पेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर पाले, नमो सर गाउने, नमो सर पौने, नंगी अनाथे, इंद्र संग परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप है, परपंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूप है, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जूते, नमो नित नारायण कुरूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो सह सह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्त उल निवासी, सदा सिद्ध द बुद्ध द वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता, परम परम परमेश्वरं परोक्ष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता, दयालं अछेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है थले है पीत है पे है, प्रभु है जू है देश है भेस है, पुजंग प्रयत छंद, अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूप, नमो सर माने समस्ति निधाने, नमस्तवंग नरनाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग पंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परमतान, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृसंग, नमो सर्व कृसंग, नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीज अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूप को कर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी, चारपट शांत है प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे चाल भोगे चाल, राज टाल साजे अखल धर्मं लख कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भूता सर्वंग ज्योता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले, रूआल छंद रूआल छंत है प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्व मान तर मान देव अपेव, आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को

देस और न भेस जागर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विसा हो फैलिया न राग नाम का विहीन पेख धाम हुनह जाए सर्ब मर सर्बत्र मर सदै मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन की न रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानी जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानी केह जे बतात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चत्र चक मन ही पुरतीन लोक चौदह के बेख्या जग जापी जेह जाप आद देव नाथ मूर्त थाप सब जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचे स्वयं पहव गड़न भंजन हार कालहीन कला संजूत अकाल पुरख देस धर्म तंस भरम रहत अभूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्त तेग पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंग ही न भंग नात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अन भेख सर्व शास्त्र न जानी जेह रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाकह नेत भगत नेत कोट स्मृत पुराण शास्त्र न आवहि वह चेत मद भार छंत प्रसाद गुण गण उदार महिमा।

को रोजी देहांत है, के राजकारी में के कर्मकारी में के सर्वंग कली है, के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र दान है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पवन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप है, के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग काली में, के परमंग फही में, के अकला लाम है, के साहिब कला में, के हुसन अल वजू है, तममल रुजू है, हमें सुल सलाम है, सलीख तम मुदाम है, गनी मुल सकास्त है, गरीब उल परास्त है, बिलुंदल मकान है, जमीन उल जमान है, तमी जुल तमाम है, रुजू अल निदान है, हरी फुल अजी में रजाय के यकीन है, अनेक उल तरंग है, अभेद है, भंग है, अजी जुल नवाज है, गनी मुल खराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रमुक्त बेभूत है, भर भूत प्रभा है, सुजूत सुधा है, सदैव सरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्व साज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, दरबाद स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, अगाध है, अनूप है, अवंग आद रूप है, अनाद स्वरूप है, नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभरगंग त्रिबाध अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग है, त्रिभुक्त स्वरूप है, छेज है, छूत है, नरकंग प्रणास है, प्रथिल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, बेभूत

ता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जोगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बिपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात।

अमृत अमृतामृत करुणा करत करत करत तरण तरत अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृत अकृत अमृतामृत अजबाकृत अमृतामृत नर नायक है खल कायक है विश्वम्भर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जाप जापन है अकलंकृत है अकल

नम सूर्य सूर्य नम चंद्र चंद्रे नम राज राज नम इंद्र इंद्रे नम अंधकारे नम तेज तेजे नम बृंद बृंदे नम बीज बीजे नम राज संगताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू नास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नाम काम गा हटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी स्वतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमुल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय बगनी में हरियं करियं करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बेपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवें तवै प्रसाद सवैये सरावग सुध समूह सिद्धानक सिद्धानक देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपाहु ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दसान को बाज द ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दार सो संजम नेम अनेक बसेख भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पावन आहार जति जत तार सब सब चार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सुध सुपाह दुरंत दुबाह सो साज सुनाह दुर्जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरे आर अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हरसो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच करे उसो एक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपैंगे जीव जिते जाल मैं ताल मैं पाल ही पाल मैं सब थाव थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कह बहु पुंज खपैंगे साध समूह परसान फिर जग सत्र सब अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अवजोन त्रिलोको राज करेंगे कोट स्नान गजातक दान अनेक सुवंबर साज बरेंगे ब्रह्म हे सर्वसन सचिपत।

नहात फिर सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो भास कियो बखियार सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लो सब जन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग कर लटकायो काहू लख्यार वाची दिशा मह काहू पछाहा को शीस नवायो कुबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहायो कूर करे और जो सब ही जाग श्री भगवान।

श्री भगवान को पहे न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कब

परत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबो आप हाथ द मोहे बचाव सुखी बस मोर परवार सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिय सा बैरन को आज संघरिय पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की।

पात दल हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाय दुष्ट दुख तेलह बचाय कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अस्तुज जप है दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सब आप।

संबत 1750 अर्ध सहस फोन तीन कह ज भाद्रव सुधी अष्टमी रावारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गह जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृ

राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पह मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया सबद गावणिया।

करे प्यारिया कर कृपा किलवख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सो जन पावे पावे ता सो जन देह जिसन होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर दह दिसक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पै।

नह जाय सहसा कित संयम रह कर्म कमाय सहसा जीव मली न कित संयम तो ता जाय मान तो भला गह हर सो रह चित लाय कह नान गुर पर साधी सहज उपज सहसा जाय जिया मैल बारह निर्मल बारह निर्मल जी हो ता मैल तिन जन्म जुव तिनी जन्म जुवै हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मन वसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै जो बिता लिया कह नान जन सच तजा कूड़े लागे तिन जन्म जुवे हारिया जी आह निर्मल बारह निर्मल बारह निर्मल जी आह निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचा नाही मरसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले से बन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे है गुर नाले जे को सिख गुरु सेति सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जिया हो रहै गुर नाले गौर के चरण हृदय ते आया अंतरात्मा समाले आप छड़ सदा रह प्रण।

सेव सकत आप उपाय क्या करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख्या गुरमुख सब बुझाए तोड़े बंधन होवे शब्द मन वसाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनों आप करे सो होवे एक।

मद फिटा है यो अन्न असाडा फिटा है तन फिटे फिट करे मन जूठे चुले भरे न कहो नानक सच दी आई है।

0: की फतेह।
1: गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी संगत वड्डे भाग अमृत वाले गुरु के हजूर पहुंच के सच्चे पातशाह जी दियां बख्शिशां रहमता प्राप्त कर रहे हां। माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुरु डीठे। गुरु के दीदार कीतियां करोड़ा फल मिलते ने जपां दे तपां दे दान पुन बरतनेम संजम आदक। गुरु के दीदार कीते हन गुरु जी ने मेहर कीती अमृत वाले तो ही अपने सोहने दरबार विच सोहने तख्तां ते प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन अलाही हुक्म फरमाया है और अमृत वेले दे हजूरी दी सेवा सतगुरां ने कृपा करके सत्कारयोग सिंह साहब भाई साहब भाई ज्ञानी मनदीप सिंह जी तिन्हां नूं बख्शिश कीती है। उपरंत सिमरन श्री आसा जी की वार दा कीर्तन गुरु चरण चरदास ते गुरु महाराज दा अलाही फरमान आपने सुनिया है। सेवा महाराज जी ने बख्शिश की है सत्कार योग मुख अरदासीए सचखंड श्री दरबार साहब सिंह साहब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी वाहिगुरु कृपा करन। कथा सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने अज दा अलाही फरमान 859 अंग उते सत्य पातशाह जी मेहर करदे ने। सो गुरु कृपा करन ज्यों बुलाए त्यों बोलीए ज्यों आप बुलाए सोए लमेरा हुक्मनामा है। गुरु मारे मेहर करन रसना करांगे पवित्र प्यार।

0: ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ। ਉਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਵਰਾ ਭੋਲਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸ਼। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਗਊ ਤੂੰ ਗਊ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਖੋਤਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੱਭੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਗਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਟਿਕੇ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਜਦ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਗਲਤ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨ ਵਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮਹਿਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਲਟਾ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ, ऐसा बाणी दा बाण लगे है, पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गए। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होगा, जरूर इना भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा है जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर का मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया ते टुटे पैर का एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइये ज्यो चाक गूंगा मुस्कारे, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल विच रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नां सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखिया है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहने हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है, संवेदना। असी भी देखते हैं बुढ़ियां नू, असी भी देखते हैं बीमारां नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदियां नू देखे होवेगा, एको ही दफा देख के चोट लग गई। या ते अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा, ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है, और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा संसार तो कोई दुख बहुत बड़े रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनु इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनु शब्द ने चोट की थी होवे। दूसरा ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनु अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा अजे संसार तो भी इसनु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं ते मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया, अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध च मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी के नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होंगे, खेल कुछ भी नहीं। कित लहर बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है, बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेल। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमानी सिंहासन जिदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलदे। कहिंदा बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नू कहिंदे ने, वड्डा तख्त उनू औरंग कहिंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहिंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकों नू ए मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्हां नू मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, ए मसनद है। जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश है, इनू फारसी दे औरंग कहिंदे ने। वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल दे च पाके ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन से, शायद आपनों पता होवे आदि काल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे, रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहते हैं उपनाम, कोई उपमा है, गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे, तखल्लुस रखे। जैसे हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तहल्लुस रखिया अकबर। अकबर दा मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहिंदे ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। एक अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधां बाई की कुख तो पैदा हुई सी, जोधां बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन सी। ये राजपूत अपने धी बैणा दे डोले मुगलों को देन लग पे सन, जिदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधां बाई ए बेगम से अकबर दे इदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम। वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च। जहांगीर इसने गुरु अर्जन देव जी ने शहीद किया। कल गुरुपुरब तुसी मनाना, इसने ही तरह तरह के तसइये ताए, इसने ही बहुत वड्डा जुलम किया। दोगला से जोधां बाई का लड़का से अकबर का लड़का से तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है, तखत ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहिंदे ने तखत नूं वड्डा तखत, जेब कहिंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी माण मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत जफरनामे दे राही लिखते ने औरंगजेब नूं, न जेबन तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। ऐ मुइनुद्दीन ये नाम तेनू शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त पे बैठता है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी मार, तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी बसिद को सफा, न जेबत तो रा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। महा फरेबी है, तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर, तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है। तू ते मनुख ही नहीं है, तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये जुर्रत उसनों जो है ऐसा आख है। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्हों मसनद कहते हैं, पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्हों गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हों की पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई, संगत ने मान सम्मान इतना दिता, इन्हों को हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तख्त मिले है, लेकिन सिख जगत देच आज गाल बन गई, किसी नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जांदा है मसंद है, मेरा ही मसंद है। लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तख्त, जिससे बैठे हैं ये छोटा तख्त। गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकां दे लई बनवाए सन, वे संगत विच उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनाण, ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संग नूं ए देख सकन, संबोधन कर सकन, ते विचार दा ज्ञान दा गुरबाणी दा सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गालिब कहिंदा एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। ये औरंग ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ। ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਬ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਪਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਈ ਕੋਲ, ਨਾ ਸੈਯਦ ਕੋਲ, ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਚ ਹਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਚ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਰ ਨਾ ਸਰਾਪ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪਕੜ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਮਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਈਸਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਖਿਡੌਣਾ। ਅਕਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਲ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੇਆਮ ਪਗ ਲੈ ਗਈ। ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ, ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਏ। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते हैं, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्नां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खा दी है, आत्म क्रांति, खुद नू बदलेगा। कहेगा ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहिंदा मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्जे जिंदगी ऐ गुरु तेरे मुताबिक करांगा, जो तू कहिंदा है। इहनूं कहिंदे ने आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश च सब तो ज्यादा है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने दिनवान। एक मैगजीन है भारत दे च निकल रही मंथली, उहदे च आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कां दे हिसाब नाल सब तो ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करदे ने, और सब तो ज्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा दी याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नूं भुलाण दी कोशिश करेगा, दिन रात शराब दे नशे च रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप नूं भुलाएगा, चेते कुछ भी ना आवे। क्यों चेते आएगा? तो निराश है, उदास है, उदासी च किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नूं बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नूं खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नूं भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग दे च, यह आत्महत्या नहीं करेगा, यह आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, यह आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की थी उसने, ये भी मैच करते हैं। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है, या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया है, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नूं बदले है। लेकिन ऐसा भी आंदा है, खुद नूं भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे च होण, या सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति दी नहीं सोची, जिन्हें आत्महत्या दी नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति दी नहीं सोची, अजे इसनूं चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया ना उदास होया। बाकी दा खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय दी उलंघना ना करा। दरबार साहब दे आए हुए महान कीर्तनी बहुत सुंदर कीर्तन करदे ने, रब्बी रस बनदा है, आप समय सिर आया करो।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਂਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।

लाज विचार। अपना जान मुझा प्रत परिया, चुन चुन सतर हमारे मरिया, देख तेग जग मैं दो चले, राखे आप मुहे और ना दले। तुम मम करहो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जाने अपना मजा निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे। अपना जान करो प्रात पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ बारो, हमरे सब वैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिद नाना, कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो, चूक होए कबले हो सुधारो, कबे बात दोहरा।

अनंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बेब विचार कछ नाहे जल ते उपजत रंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा।